संसार विच जाके संसार दे सुख नहीं मंगना चाहुंदा। मेरी तुसां ड्यूटी लाई है कि उस मात लोक दी धरती दे उत्ते जाके वध रहे जुल्मां नूं ठल पाउणा है कि हे मालक हे अकाल पुरख मेरे ते कृपा करनी, मेरे विच ए शक्ति पाउणी। सतगुरु जी उच्चारण करदे ने हे रब हे सस। सतगुरु जी उस अकाल पुरख दे नामां नूं अनेकां तरह बयान करदे ने। जिदां आपां इक पंक्ति श्रवण कीती है कि संत सहाये सदा जगमाए कृपा कर श्याम यह वर दीजे। सतगुरु जी मैनूं यह वर देना कि मैं शुभ कर्मन ते कबहू ना टरों। आख्या सतगुरु जी मेरे विच हे रब उस चंद्रमे दे मुताबक उस सूरज दे मुताबक रब आखदे ने सूरज नूं कि सतगुरु जी हे अकाल पुरख उस सूरज दी भांत गर्मी भी होवे जोश भी होवे, हे सस उस चंद्रमे दे तरह शीतलता सुभाव भी होवे ताकि मैं डिग्या होया नूं चुक के

जो प्राप्त होया इस नूं देवी देवते भी तरस रहे हैं, जो तैनूं प्राप्त है। परंतु इस दा इस नूं फिकर नहीं है। कोई कौली खोज घर दे विचों सासन कई कई दिन नींद नहीं आउंदी, परंतु मनुखा जन्म जा रहा है, स्वास जा रहे हैं, 24,000 दा घाटा हर रोज दा पैंदा है, इस नूं कोई फिकर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आओ गजबज कीर्तन ऐसियां दे विच बोल के अपनी रसना पवित्र करिया करो। सत्संगा दा समा भागां दे नाल मिलदा है, अपनी मनोबिरति निकागर करन दी कोशिश करिया करो। घर तों आउणा है गुरु दा नाम जपदे होए। बहुत बारी संगत विच इह गल्लां विदित करवाईयां जांदियां हन, परंतु असीं ध्यान नहीं देंदे, फिर साडियां उही आदतां रहिंदियां हन, उही गल्लां रहिंदियां हन, इस करके पूरा फल तां ही प्राप्त नहीं हुंदा। साडी मनोबिरति जिहड़ी है तरक्की नहीं करती, आत्मक तरक्की साड़ी नहीं होंगी। सो घर तो आना है नाम जप दे, फिर संगत विच श्रद्धा नाल नमस्कार करनी, मत्था टेकना, दूजियां दे नाल नहीं जुड़ना। बहुत सारे देखिया ने एक दूजे नूं हाल चाल ही पुछदे रहिंदे हन, देखते रहिंदे हन कौन आया कौन जाया। असल दे विच ओह सच्चे जग्यासू नहीं होंदे, ओह सत्संगी नहीं होंदे। वैसे घूमना फिरना आ जाना जिवें पंज तरह की सिखी हुंदी है, इसे तरह जग्यासू भी कई तरह के हुंदे हन। सो खैर रहो विचार, असल दे विच सच्चा सत्संगी जग्यासू उही है जो अपने निशाने नूं अगे रखदा है कि मैं संगत विच क्यों आया हाँ, मैं असीं गुरु कोल क्यों जाना है, असीं संगत विच क्यों जाते हाँ। कोई स्कूल कॉलेज विच जाता है, उत्थे उसनूं जो उसदे रूल्स हैं उसनूं सत संगत ओह फॉलो करने पैंदे हैं स्टूडेंट, नहीं तो फिर उसनूं स्कूल विचों कढ दित्ता जांदा है जां उसनूं ताड़ना हुंदी है, ओह पूरा लाभ नहीं उठा सकदा। मन जो उसदा एकागर नहीं है, टीचर दा लैक्चर भी ध्यान नाल सुनदा नहीं है, तां सत संगत ओह फेल हो जांदा है। इसे तरह ही जो यह साडा स्पिरिचुअल जो साडी लाइफ है, जो कॉलेज है, इस विच रूहानी कॉलेज दे विच असीं इत्थे सेध लैण वास्ते आउंदे हाँ। जेकर असीं इन्हां गल्लां वल ध्यान नहीं देवांगे तां सानूं पूरा फल प्राप्त नहीं हुंदा। भाई गुरदास जी कहिंदे हन, पूछत पथक ते मार्ग न तरै पग प्रीतम के देस कैसे वातन सजाई है, पूछत वैद खाद आखदन संजम से कैसे रोग मिटा सुख सहज समाई है, गाय सुन आखे मिच पाई ना परम पद गुरु उपदेश गह जौ लाना कमाई है। जिन्ना चिर गुरु दे वचन गुरु दे उपदेश गुरबाणी स्वरूप जो कीर्तन स्वरूप दे विच आपां विचारदे हां सारिआं वास्ते जो सांझे हन, जे उहनां नूं असीं नहीं कमाउंदे सानूं पूरा फल प्राप्त नहीं हुंदा है। वैद नूं डॉक्टर हकीम नूं जे असीं पुछी जाइए ए मेरी बीमारी है मैनूं आह रोग लग्गिआ, दवाई भी दिंदा है कोई मेडिसिन जो दिंदा है, असीं जो पथ परहेज दसदा ओह ना रखिए तां वी सानूं ओह फिर उसदा रोग दूर नहीं हुंदा है। जेकर पुछी जांदा है ए रस्ता कित्थे नूं जांदा, ए रस्ता कित्थे नूं जांदा, ए रस्ता कित्थे नूं जांदा है, परंतु उस रस्ते ते चलदा नहीं है, तां फिर ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਨ ਅੰਦਰੇ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਕਮਾਈਏ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

देह बहर न पावे कछु उपाव मुक्त का कर ले। गुरु जी कहते हैं कुछ उपा कर ले। गुरबाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी है, ये सारे भगतां की बाणी, संतां की बाणी, गुरुआं की बाणी, भगत रविदास, भगत कबीर, बाबा फरीद जी, सारिया की बाणी गुरु महाराज ने एकत्र की है। ये सारे संतां भगतां दे सतपुरशां दे वचन हैं, गुरुआं दे वचन जो हैं। सो मानस दे बाहर ना पावे कछु उपाव मुक्त का कर ले। कहिंदे कोई अपना उपा कर ला, कोई जतन कर ला। ये जो तेनू वक्त मिलिया, बहुत गोल्डन चांस मिलिया है, बल्कि बहुत ही अमोलक समा मिलिया है। इस समय दे विच सुनिया सी जे ये वक्त हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, तो मनुखा जन्म दे विच ही हो सकता है। 84 लाख जून दे विच, किसे जून दे विच ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होंदा, ना ही गुरु मिलता है, ना ही सत्संगत मिलती है, ना ही परमेश्वर का नाम मिलता है, ना ही इस दे अंदर कुंडलनी जागृत हो सकती है। बोल सतनाम श्री वाहिगुरु। तीन तरह की कृपा होंदी है, तीन तरह की मेहर होंदी है। एक तो अकाल पुरख की मेहर है, अकाल पुरख की मेहर है। अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर जो सृष्टि करता है, उसकी क्या मेहर है, सानू उसने ये अमोल जन्म दे देता है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। ब्रेन दे देता है, दिमाग दे देता है, कितना तेज दिमाग है, कितना कुछ सोचता है। इस दे विच अपने साध संगत के ये दिमाग जो ये सुंदर घाड़त है, ये सुंदर रचना है, शरीर की रचना है, सृष्टि की रचना है, जां फिर ये अमोलक नेत्र अखां दे दित्तियां हन, हथ पैर दे दते हैं, जबान दे दती है, कन्ना विच सुन दी शक्ति दे दती है, ये सब अकाल पुरख की कृपा है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। इस जीव दे उते अकाल पुरख की कृपा हुई है जो ये मनुखा जन्म दिता है। इस नूं देवते भी तरसते हैं जो साडे उते अकाल पुरख ने यह कृपा की है, मेहर की है। गुरु जी कहते हैं रामैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। रामैया के गुण चेत प्राणी, उस परमात्मा ने गुणा नूं कुछ याद कर, अकिरत घाना मन कुछ याद कर, चेते कर। रामैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। ते क्या तेरी जो जड़ है, कितों तू पैदा होया है, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, की दिस रहा है, क्या नजर आ रहा है, तेरा कितना सुंदर शरीर उस वाहिगुरु परमेश्वर ने बनाया है। थोड़ा जा फर्क पै जाए देख लो कितना औखा हो जाता है। डॉक्टरों को भजे फिरते हैं, असं हस्पतालों भजे फिरते हैं, ही अखा च थोड़ा जा फर्क पै जाता, कन्ना च सुन दी, दंदा की होर सास सुन, कितनी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, कितना औखा हो जाता है जिसने सारा शरीर दिता है। रामैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सिवार सिगारिया। देखो पंजे तत् उसने किवें इकट्ठे किए हैं, पंजा तत्तां दा कितना सुंदर पुतला तैयार किया है, जिस दे विच इह रूप आई है, आत्मा पाई है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। साहिब कै फरमाया जियो देही विच आए पाया, जो सो उस दा हुक्म हुंदा है। इस रूह नूं आत्मा नूं इह पंज तत्त दा पुतला, पंज तत्तां दा इह घर, पंज तत्तां दी इह गड्डी, पंज तत्तां दा इह रथ शरीर इह प्राप्त होया। इह अकाल पुरख दी कृपा है, अकाल पुरख की मेहर है। कितना दिमाग कम करता है, किवें कम कर रहा है, ये माता पिता की कृपा तो नहीं है, ये तो अकाल पुरख की कृपा है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। शरीर की रचना तो उसने की थी। सो अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा है जो उसने सानू ये हथ पैर दे दते हैं, अखां दे दतियां हैं, यह शरीर दे दता है, शरीर दे विच चलन की शक्ति पा दती है, ये रूह नूं ये जिहड़ा है ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀਵ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਾ ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ, ਧਿਆਇਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀਏ ਚਿੰਤ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਕਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਪਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਨ ਚ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਕਿਰਤ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੰਦਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਿ।

तान गुरु नानक पातशाह इस शब्द विच अकाल पुरख वाहेगुरु दे चरणा विच अरदास कर रहे हन। हे निरंकार आप सरबग हो असी अलपग जीव हां, आप निरंकार हो असी भुलनहार हां, असी कूड़यार हां। जो भी बचन करदे हां उस नाल कूड़ दी लब लगी होंदी है। आप दा नाम सदा सच है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। असी गुनाहगार हार हार फुलन हार हां, इसलिए संसार ते आके जो कुछ करना सी ओ कुछ कीता नहीं। तेरे दर ते ता जपन वालियां दी इज्जत है सत्कार है, पर असी तो केवल तेरी बख्शिश लोड़दे हां। कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई चंगा कर्म नहीं, कुड़ियार असी कुड़ियार हां।

तरम में श्रेष्ठ तरम, हर को नाम जप निर्मल कर्म। छगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल क्रिया। छगल बाणी में अमृत बाणी, हर को जस सुन रसन बखानी। मैं तो कर्म करने सी सिमरन वाली, मैं कुछ कीता भी सही तां रिद्धियां सिद्धियां नूं प्राप्त करके हंकार दी पंड होर वड्डी कर लई। धन गुरु नानक पातशाह संसार नूं तारदे होए जदों वली कंधारी जिहड़ा बड़े अहंकार दे नाल चिल्ले कट्टे तपस्या कीती, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कीतियां ते अपने जोर दे नाल पानी बंद कीती बैठे। जेड़ा मेरा चेला होवे उसनूं ए पानी मिल सकदा है। धन गुरु नानक पातशाह क्योंकि जगत जलंदे नूं ठारन जो आए सन, जा पहुंचे वेख लैंदे सन भई किथे सृष्टि नूं दुख दिता जा रहा, किथे रब दी साजी होई सृष्टि दुखी है ते फिर आप जाके सुख वंडदे सन। पापी नूं मारिया नहीं, पापी नूं तार देना। जिथे भी पुन्ना दा गलत इस्तेमाल हो रहा सी, पुन्ना नूं पुन्ना वाले पासे जोड़ दिता। वली कंधारी कर्म कांड करके पत्थर ते बैठ के बड़िया रिद्धियां सिद्धियां विखांदियां विखांदियां पत्थर ते बैठा होया, आप भी पत्थर हो चुका सी। धन गुरु नानक पातशाह जी ने मरदाने नूं भेजिया, जा मरदाने पानी लैके आ। मरदाना एक वेरी गया, दूजी वेरी गया, तीजी वेरी गया, बड़े अहंकार दे नाल कहन लगा जे इतना ही तेरा गुरु शक्तिवान है तां आप क्यों नहीं कढ लैंदा पानी, तू मुसलमान होके काफर दी संगत कर रहा, कुछ अकल कर। ते मैं काफर नूं पानी नहीं दे सकदा। धन गुरु नानक पातशाह अच्छा अहंकार जो करना मर्दानिया आ दो पत्थर पुट सत करतार सत करतार नाम जपदिया जदों ए दो पत्थर चुके तां विचों अमृत रूपी चश्मा फुटिया। उचारण करो श्री वाहिग वाहिग वाहिग वाहिग वाहिग। हुण जितना पानी जितना जल ए काबू विच रख के बैठा सी ना वली कंधारी, सारा दा सारा तले आ गया, उपर जल सुक गया। गुस्से विच आके लोहा लाखा होया होया मेरियां शक्तियां दा इसनू पता नहीं, मैं की कर सकदा हां। आ मैं हुणे दसदा हां, अपनी शक्ति दे नाल एक वड्डा पत्थर रोड़िया पहाड़ी तो। मर्दाना कहन लगा महाराज कृपा करो मेहर करो, इस पौजल तो बचना बड़ा औखा है। ते धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे मर्दानिया तू करतार नूं चेते रख, जलाल विच रहो। करतार दे नाल जेड़े जुड़े रहिंदे हन ना उन्हां दा कोई वाल विंगा नहीं कर सकदा। एदा पर्वत दा पर्वत रुड़ के आ रहा है ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने बख्शिश कीती कृपा कीती कोट ब्रह्मंडां दे बांधे। जा आपने नदर कीती तां ए पत्थर नेड़े ही आके जदों रुकिया तां आपने झट इस पत्थर ते पंजा ला दिता ते इस तरह लग्या जिवें मोम दे विच पंजा खुब जांदा है। सारा जगत जो वली कंधारी तो दुखी सी धन गुरु नानक पातशाह जी दे चरणा विच आ जुड़िया। हुण वली कंधारी सोचदा है भई मैं तां कखों होला हो गया, एडियां शक्तियां दा मालक सां पर मेरी तो कोई भी वाह ना चली। हो सकदा है ए मेरे अहंकार नूं दूर करन लई आया होवे, आप खुदा आया होवे, मेरी रिद्धियां सिद्धियां अहंकार ते क्योंकि पुन्ना ते रिझदा है रब। हो सकदा है मैनूं तारन लई मेरियां रिद्धियां सिद्धियां मेरे अहंकार दे सदके मैनूं तारन आया होवे, मन नीवा हो गया
ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਦਮ ਬੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਦਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਹੁੰਦਿਆ ਹੁੰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਮੇਟਣ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੀ ਖੁਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਖੁਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਬਏ। ਜਦੋਂ ਖੁਦੀ ਮਿੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਬ ਲੋ ਕੋਟ ਉਠਾਈ ਚੱਲੇ ਤਬ ਤੱਕ ਦਾਮ ਭਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਛਿੜਤੇ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਗੀ

पोट डार गुर पूरा मिलिया ता नानक सुख दे पोट गुरु अगे जिना ने रख दीती ते फिर सुख ही सुख है। धन गुरु नानक पातशाह पूरने पाके दस रहे हैं भाई सब कुछ पाके भी गुरसिख ने ए अरदास करनी है। आओ मैं भी तुहाडे लई करदा हां गुरु नानक सच्चे पातशाह बख्शिश कर रहे हैं भाई मैं भी तुहाडे लई करदा हां तुसी भी सारे मिलके कर

ऐसा विचार करो, हम भी ऐसे बगीचे के बूटे बन जाएं जिस बगीचे के बूटों को वासना रहित फल लगता है, निर्वाण पद प्राप्त होता है। ऐसा फल जिसमें नाम रस है, नाम रस के अलावा और कोई भी वासना नहीं, और ऐसे गुरु को नमस्कार करें जो ऐसा माली है, जो इन बूटों को अमृत से सींचता है। देखना, इस बगीचे के बाहर जाकर देखो, आसपास बिखुआ के कुंटा, बाहर ईर्ष्या है, दुविधा है, कपट है, छल है, बाहर तो जहर है। इसीलिए हमें चेतन करते बोले, देखना इसके भीतर आपको अमृत से सींचा जाता है। वो ऐसा अमृत जिसने आपको अमर करना है, जिसने आपको जन्म मरण के चक्कर से बचाना है, आवागौण से बचाना है। और ऐसा है जो गुरु की नजर में फूलता है, उस बूटे को ऐसा फल प्राप्त होता है जिस फल से वो सच प्रकट हो जाता है, जिस सच से ये बोया गया है। ऐसे मालूम होता है गुरुमुख की टेक जो है, नाम है, ओनली नाम। गुरुमुख की टेक ओनली नाम। गुरुमुख परमात्मा के गुणों की सुगंधि बांटता है, ये गुरुमुख का दान है। गुरुमुख परमेश्वर के नाम की कमाई कर, गुरु शब्द की कमाई कर, अपने मन को, अपनी मत को तो लेता है, ये गुरुमुख का स्नान है। पानी से तो सब नहा लेते हैं, लेकिन जो वाणी से नहाता है वो गुरुमुख है। देखना, पानी से हमने अपने तन को, अपने शरीर को स्नान कराना है। ऐसे नहीं कि हमने स्नान नहीं करना, शरीर को पानी के स्नान की जरूरत है, लेकिन पानी का स्नान के अलावा आपको मन को भी वाणी के स्नान की जरूरत है। आप जितनी देर तक वाणी से स्नान नहीं करते, आपका मन अरोग ना होगा। देखना, जे मन अरोग नहीं, जीवन भी अरोग नहीं। जे जीवन अरोग नहीं, ये काया भी, ये तन भी अरोग ना होगा। सिर्फ हम सोच लें कि सिर्फ तन को अरोग रखें, मन ये तंदुरुस्त ना होगा, ते शरीर भी काम क्रोध काया को गाले, जो कंचन सुहागा टल। मन क्रोध करता है, मन काम करता है, लोभ करता है, लेकिन भोगना तो शरीर को पड़ता है। भोगता शरीर है, इसलिए गुरुमुख
वाणी से स्नान करता है, प्रभु की वाणी से स्नान करता है, अपने मन को भी अपने मत को भी। गुरसिखी का स्नान बताते हुए भाई गुरदास बोले थे, गुरसिखी दा नामना गुरमत लै दुरमत मल तोवै, गुरु की मत लेकर खोटी मत को तो लेना। पितर शब्द अमृत वचन है गुरबानी के, ज्ञान महारस नाई है भाई, मन तन निर्मल हुए। गुरु के ज्ञान के महारस में लिव लगाकर स्नान करना, सुरती जोड़कर स्नान करना, मन तो अरोग होगा लेकिन मन के साथ साथ मन के रिश्तेदार, मन के संबंधी जो ज्ञान इंद्रे हैं वो भी अरोग हो जाएंगे। देखना जे मन पितर हो गया, देखनी भी पितर होगी, बोलना भी पितर होगा, सुनना भी पितर होगा, सुनना भी पितर होगा और परसना भी पितर होगा। बिना मन की पितर साथे बेशक पानी से कितना स्नान कर लें, इंसान की आंखें तो इंसान जैसी दिखती है लेकिन इंसान की देखनी इंसान जैसी नहीं रहती। इंसान के पांव तो इंसान जैसे दिखते हैं लेकिन इंसान की चाल इंसान जैसी नहीं रहती। इंसान की जबान तो इंसान जैसी दिखती है लेकिन इंसान की बोली इंसान जैसी नहीं रहती। इंसान के ए हस्त पाव हाथ तो इंसान जैसे दिखते हैं लेकिन इंसान के कर्म इंसान जैसे नहीं रहते। कारण क्या है? पानी से शरीर को तो धो लेता है लेकिन मन को वाणी से नहीं धोता। गुरमुख ने, गुरु के बगीचे के गुरमुख ने, प्रभु के बगीचे ए अमृत की बाड़ी के गुरमुख ने स्नान किया है। ए शरीर सरवर है संतो, स्नान करो लेवला। परमेश्वर से बिरती जोड़कर देखना, ऐसा स्नान किया अब तो उसकी आंखों के सामने सब में परमात्मा की जोत दिखाई देती है, उसकी देखनी कैसी हो गई। अब तो ये बोलता है, तन मन हुए निहाल जहां गुर देखा सामने। अब तो सुनता है, सुनो सत वाणी। अब तो बोलता है, रसना राम रसायन माती अखु वाहिगुरु। गुरमुख की टेक नाम ओनली नाम अखु वाहिगुरु, ओनली नाम। गुरमुख परमेश्वर के गुणों की सुगंधि बांटता है, ये गुरमुख का दान है। निरपो होए पजय भगवान, साध संगत मिल कीनो दान अखु वाहिगुरु। ऐसा दान करने वाला गुरमुख एक बेनती कर दूं, ये कभी मरता नहीं अखु वाहिगुरु। गुरमुख कभी नहीं मरता। देखना, शरीर जन्मेगा मर जाएगा लेकिन गुरमुख नहीं अखु वाहिगुरु। मेरे साहब ने बोला, नानक मुए ना आखियां जे गुर कै शब्द समाहे। उन्होंने कदे मरिया होया मत बोलना, गुरमुख को कभी मत बोलना कि गुरमुख मर गया। गुरमुख नहीं मरता, गुरमुख कभी नहीं मरेगा। शरीर मरता है, जो जन्मे सो जानो हुआ, लेकिन ये बोला गोविंद भगत अस्थिर है थिया। जिसने जन्म लिया वो मरेगा लेकिन गुरमुख नहीं।
जो गुरु के शब्द में समा जाए वो मरता नहीं। पितृवाणी में कहा, तिथे काल ना पड़े जिथे गुरु का शब्द अपार। जिथे गुरु का शब्द है उत्थे काल नहीं पो सकता। गुरमुख शरीर नहीं होता, शरीर में रहने वाला होता है। शरीर तो आप भी नहीं, शरीर हम भी नहीं, हम शरीर में रहने वाले हैं। हम तो तब भी थे जब शरीर नहीं था, हम तब भी होंगे जब शरीर ना होगा। आखो भाई, गुरमुख शरीर नहीं होता, शरीर आप भी नहीं, शरीर हम भी नहीं। शरीर में रहने वाली रूह जो गुरु के सन्मुख रहती है उसको गुरमुख बोलते हैं। और गुरमुख के स्वरूप को ऐसे बताया गया, जो गुरु के सन्मुख रहता हर बात में गुरु को आगे करता है, अपने जीवन में गुरु की सोच को आगे रख कर जीता है। ऐसे गुरमुख के बारे पितृवाणी में बोले थे। गुरमुख तो यह कहता है, सब कुछ होते हुए भी गुरु के पास जो समरस शक्ति है वो गुरु गुरमुख को दे देता है। लेकिन गुरमुख ये बोलता है, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर क्या जानो। आखो किच हर किया पेओ कबीर कबीर। भगत कबीर जी बोलते हैं गुरमुख के जीवन के लिए, वो तो बोल रहा है, ना हम किया ना करेंगे, ना हमारा शरीर कुछ कर सकता है। देखो कबीर कबीर अब संसार बोल रहा है, एक कृपा किसकी है जिसका कबीर ने नाम लिया। ये अंदर से मोह ममता मर चुकी है, ये किसने मारी? प्रभु के नाम। जिस प्रभु के नाम की समर्था प्रकट हुई है वो ही करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ एक मनमुख भी है, कर तो कुछ सकता नहीं लेकिन अपने आप को गिनाता है। वो तो सत्संग में आकर भी आपकी मन की बात मानता है, गुरु की नहीं। वो ये बोलता है, हम किया हम करेंगे। आखो भाई, हम मूर्ख। आखो भाई, गवार। करने वाला बिछरिया दूजे पाए पिया। कर कुछ सकता नहीं लेकिन मनमुख बोलता है कि हमने किया, हमने सत्संग बुलाया, हमने इकट्ठ किया, हमने बोला, मेरे बोलने से ये बात हुई। मनमुख तो ये बोलता है, जो करने वाला है उसको उसने बिसार दिया है, कर कुछ सकता नहीं। पितृवाणी में ऐसा बोला, कहते गुरमुख मुए जीव दे परवान है, मनमुख जन्म मरा है। आखो भाई, देखना आपने एक वृक्ष देखा, वृक्ष में आपने टाणियां देखी, टाणियों में पत्ते, पत्तियों में फूल, आपने फूलों को फल बनता भी देखा होगा। हवा आती है चूलते हैं, पता पता उसका खेड़े में है, फूल खेड़े में है, उसकी टाणियों भी हवा से चूल चूल कर मस्ती में शोर मचाती हैं। लेकिन उसे टाणियों में एक टाणी तोड़ ले, देखो जन्म तो वृक्ष का हुआ, सब टाणियों का हुआ,
लेक टाणी उससे तोड़ लें, उस टाणी को तोड़कर उसको छील भी लें, अब वो टाणी नहीं रहेगी, वो छड़ी बन जाएगी। हम उसको अब टाणी नहीं बोलेंगे, उसको छड़ी बोलेंगे, लेकिन छड़ी तो मुर्दा होती है, छड़ी तो जीवित नहीं होती, छड़ी को तो फूल नहीं आएंगे, छड़ी को फल नहीं लगेगा। छड़ी जीवित नहीं, छड़ी मुर्दा हो चुकी है, वृक्ष से टूटने से छड़ी मुर्दा हो गई, वृक्ष से टूट गई उसका जीवन मर गया, वृक्ष से टूट गई अब वो खिड़ेगी नहीं, वृक्ष से टूट गई फूलेगी नहीं फलेगी नहीं। देखना ये जिस वृक्ष से ये टाणी को तोड़ा गया, दूसरी टाणी को देखो जो अभी भी वृक्ष के साथ है, वो जीवित है, उसमें रस है, वो वृक्ष से रस लेती है, धरती से रस लेती है। क्या हो गया जे पतझड़ आ गई लेकिन बसंत रुत की फिर कामना है। आखो भाई, जो वृक्ष से जुड़ी है फिर बसंत रुत आ सकती है, उसमें खेड़ा आ सकता है। देखना टाणी का जन्म, छड़ी का जन्म हुआ तो धरती से, लेकिन जन्म लेकर जीवन में एक वृक्ष से जुड़ी रही, एक वृक्ष से टूट गई, जो टूट गई वो मुर्दा हो गई।

छो जन हुए परवान, कुल उधारे अपना। छो जन हुए परवान। कोई समा था किसी से सुगंधी आ रही थी, सुगंधी सूंघने वाले सुगंधी के नजदीक पहुंचे। वैसे सुगंधी का एक स्वभाव भी है, कैसा है? सुगंधी हमेशा ही फूल के नजदीक ले जाती है। जी अगर नजर फूल ना भी आए तो उसकी याद में समो देती। ये सुगंधी का स्वभाव है। सुगंधी आ रही थी, सुगंधी सूंघने वाले जिधर से सुगंधी आ रही थी उधर पहुंच गए। जिसके पास वो फूल था सुगंधी देने वाला, वो बोला, देखना ये सुगंधी इस फूल की है। देखने वाले ने फूल को देखा, उसके खेड़े को देखा, उसकी पत्तियों को देखा, गुलाबी रंग को देखा, बहुत मस्त हुआ, कैसा सुंदर फूल। समय बीत गया, कई सैकड़े वर्ष बीत गए, लेकिन सुगंधी फिर भी आती रही। सुगंधी को सूंघने वाले फिर उसके पास पहुंचे। पहले तो आपने फूल दिखाया था, अब तो आपके पास फूल नहीं है। फूल तो दिखाई नहीं देता, लेकिन सुगंधी कैसे आ रही है? वो बोला, ये बात तो बिल्कुल सत है, हमारे पास फूल नहीं, ना हम फूल को दिखा सकते हैं। जब हमारे पास फूल ही नहीं, दिखाएं क्या? लेकिन यह सुगंधी उस फूल के अत्र की है। अब फूल नहीं है, हमारे पास अत्र है, ये अत्र की सुगंधी है। ऐसे ही मालूम होता है गुरमुख जीवन में सुगंधी बांटते रहे, आंखों भाई सूंघने वाले सूंघते रहे। जितनी देर तक गुरमुख उनको शरीर मिला, उतनी देर तक उस शरीर में सुगंधी का प्रकाश किया। उनका संग करने वाले वो शुभ गुणों की सुगंधी लेते रहे। जो जीवन में दुर्गंध थी, मनुख के भीतर थी, उस दुर्गंध को मिटाने के लिए गुरमुख का संग क्या है? सच का संग, सत का संग, ऐसे विचारों का संग जो सत में प्रवेश करते हैं। गुरमुख का बोलना भी सच, गुरमुख का गाना भी सच, गुरमुख का सुनना भी सच, गुरमुख का देखना भी सच। ऐसे लगता है गुरमुख के पास सच के अलावा कुछ और होता ही नहीं, सच ही सच। सुगंधी लेते रहे, पर कितने वर्ष बीत चुके, गुरमुख का शरीर तो नजर नहीं आएगा, ना आवेगा, लेकिन सुगंधी तो आज भी लेने वाले लेते हैं। आखो भाई, जीव दिया मोया ना बिसरे। आखो भाई, जीते हुए भी सुगंधी देते थे, हम उनको याद करते थे। आखो भाई, ऐसे गुरुमुख सदगुरु का संग करते थे, सदगुरु को अपने जीवन में भी याद करते थे, सदगुरु से गुरु शब्द की सुगंधी लेते थे,
गुरबाणी की सुगंधी लेते थे, गुरु शब्द की विचार की सुगंधी लेते थे। आप देखो शरीर चले भी गए, हम भी वही सतगुरु की, वही शब्द की, वही गुरबाणी की सुगंधी आप भी ले रहे हैं। ऐसे मालूम होता है कि गुरमुख जीते जी भी सुगंधी बांटते हैं, मरने के बाद भी बांटते हैं। गुरमुख जीते जी भी अपने सतगुरु को नहीं भुलाते, मरने के बाद शरीर छोड़ जाते हैं, उनकी याद में बैठने वाले भी उसी सतगुरु को याद करते हैं। इसलिए ठीक बोला, गुरमुख मरते ही नहीं। मरेंगे तो हम शरीर मरेंगे, वो कैसे मरेंगे? इसलिए हमें बोला कि देखना गुरमुख की बरसी मत मनाना, गुरमुख की याद मनाना। बरसी तो उसकी मनाएंगे जो मर गया है, शरीर मरा है, गुरमुख तो मरा नहीं। गुरमुख की याद मनाओ, बरसी नहीं। मरत मरता तो है ही नहीं। देखना बंसरी बजती थी, बंसरी बजाने वाले बंसरी बजाते रहे, बहुत बजाई, सुनने वाले बोले बस करो, बहुत हो गया, आपने बंसरी बजा ली, अब तो आराम कर लो। लेकिन बंसरी बजाने वाला रुकता ही नहीं। फिर बोलने वाले बोले आप कुछ खा पी लो, आपको भूख लगी होगी, बाद में बजा लेना। लेकिन बंसरी रुकती नहीं। फिर बोला आप पानी पी लो, प्यास लगी होगी, लेकिन बंसरी बजाने वाला रुकता ही नहीं। ऐसे लगता है अब तो बंसरी बजाने वाले को बजा रही है, बंसरी बजाने वाला बंसरी नहीं बजा रहा। अब ऐसे मालूम होता है कि बंसरी बजाने वाला बंसरी नहीं बजा रहा, बल्कि बंसरी ही बजाने को बजा रही है, बंसरी बजाने वाले को बजा रहा। देखो बंसरी बजाने वाला हीरो हो गया, वो तो बंसरी का रूप हो गया। अब उसको ना भूख है, ना प्यास है, ना आराम है, बिल्कुल हीरो हो गया। ऐसे ही गुरमुख जो शब्द का अभ्यास करते हैं, नाम वाणी का अभ्यास करते हैं, प्रभु की कीर्ति करते हैं, इतना अभ्यास किया शब्द का, इतना अभ्यास किया शब्द का, अभ्यास करते रहे करते रहे करते रहे, ना उनको ऊंग है ना भूख है। आखो बोला गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़या दसवें आकाश, तिथे ऊंग ना भूख है, हर अमृत नाम सुखवास, नानक दुख सुख व्यापत नहीं, जिते आत्म राम प्रकाश। ना ऊंग है ना भूख है। मैं एक बेनती करूं, गुरमुख को कभी आलस आता ही नहीं। जे हमें आलस आता है तो समझे ना अभी हम गुरमुख नहीं बने। आंखों भाई जिसका गुरु ये बोले आपने अमृत वेले को संभालना है, आलस क्या करेगा? गुरमुख आलसी नहीं होता। जे अगर अभी भी हमें आलस है तो हम गुरमुख नहीं। आंखों भाई मनुख हैं, मनुख आलसी होते हैं आखो भाई, लेकिन गुरमुख नहीं। गुरमुख के जीवन में ना ऊंग है ना भूख। गुरु शब्द का अभ्यास करते करते ही रहे करते ही रहे, गुरु का शब्द का अभ्यास करते करते ऐसे हुआ अब तो ऐसे लगता है अभ्यासी अभ्यास नहीं कर रहा, बल्कि गुरु शब्द अभ्यासी को अभ्यास करा रहा है। अभ्यासी कीर्तन नहीं कर रहा, बल्कि कीर्तन अभ्यासी को कीर्तन करा रहा है। आज नाम वाणी की कमाई अभ्यासी नहीं कर रहा, बल्कि नाम वाणी अभ्यासी को अभ्यास करा रही है। आज देखना अभ्यासी तो जीरो हो गया, अभ्यासी कहां गया? अभ्यासी की मैं मर गई, अब तो सिर्फ तू ही रह गया। आखो भाई करो, अभ्यासी की मैं मर गई, अब तो सिर्फ तू रह गया। जब मैं था आप नहीं थे, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। अब तो ऐसा हो गया जब मैं ही मर गई,
जद हमारी मैं मर गई, केवल तू ही रह गया, फिर तू तो मरता नहीं, मरने वाली तो मर गई। आखो वाहिगुरु, मरने वाली तो मर गई, अब कौन मरेगा? कोई भी नहीं मरेगा। अब कौन मरेगा? मरने वाली मर गई। आखो वाहिगुरु, मरने वाली मैं मर गई, जिसकी मैं नहीं मरी वो जीते ही मर गया, जिसकी गुरु शब्द की कमाई से मैं मर गई वो कभी नहीं मरेगा, गुरुमुख ने मैं मार ली। अब तो कहते हैं गुरुमुख नहीं मरेगा। आखो वाहिगुरु, नानक मुए ना आखियां जे गुर कह शब्द समाए। एक पितर शब्द में बोले, परिसरी जे उबरी हो मैं गई मरा हो। कहंदी बड़े चंगा होया, पली होगी, चंगा हो गया। साहिब कहंदे पली सरी बड़ी अच्छी होगी, मैं बच गया। आखो वाहिगुरु, पली सरी जे उबरी, उबरी बच गया। कहंदे होमे जेड़ी सी ना मेरी, मैं मर गई। आखो वाहिगुरु, होमे गई, होमे मुई कराओ, मेरे घर विच ही मर गई। आखो वाहिगुरु, मेरे सामने ही मर गई। जे नस जाती तो शायद फिर वापस आ जानी, मारी गई। आखो वाहिगुरु, होमे मुई कराओ, मेरे घर चो ही मर गई। आखो वाहिगुरु, जब मेरे घरों मर गई तो मैं बच गया। आखो कहते फिर होया कि जो ये मर गई, कह दूत लगे फिर चाकरी। आ जे ना पांच पहला मैं सताते, आखो भाई हूं मेरी सेवा करन लग गई। आखो भाई कहता जिनी देर तक होमे सी मैं सताते, पांच बिखादी एक गरीबा राखो राखन हारे। देखो मेरा चित करता सी अमृत वेले उठा, यह लोभ मेरे तो पहले उठ पैंदा सी। एक सवान दो सवानी नाल ये दोनों लोभ रूपी कुत्ता मेरे पहले उठ पैंदा सी। मैं अजे सिमरन नहीं सी करता, बाणी नहीं सी पढ़ता, पहला भौंकण लग पैंदा सी। आखो वाहिगुरु, हाथ में मैं पोथियां फड़दा सी ते मन विकार करता सी। आखो वाहिगुरु, पेख मेरा साधु दा सी, गल्लां बड़ियां चंगियां सी, गल्ली असी चंगियां आचारी बुरियां। आखो वाहिगुरु, गलां करके तो मैं सारे चंगा चंगा आचार दा, क्योंकि होमे मरी नहीं सी। जदों मेरी कोई गल नहीं सी मंदा तो अंदर ईरखा, अंदर दुबदा उठ खड़ी होंदी सी। आखो भाई, मेरा कदम कदम ये मेरी होमे मरण ना करके ऐसे पासे लै तुरदी सी जिस पासे इंसानियत मरदी सी ते शैतान प्रगट हुंदा सी। मैं की करां, पर कहंदे ऐसी गल हो गई, हुमे मर गई, घरों ही मर गई। आखो वाहिगुरु, हुण तां हुमे दी लाश पई है, हुमे दी लाश पई पई है, मैनूं कदा डर है। आखो वाहिगुरु, मर गई, हुमे गई मुई कराहो, दूत लगे फिर चाकरी। आ देखो हुण जिहड़े दूत सी हुण तां सेवा विच लग गए, हुण तां एक क्रोध दया दा रूप धारण कर गया, लोभ संतोख दा रूप धारण कर गया। आखो वाहिगुरु, हंकार मोक्ष दा रूप धारण कर गया, काम सत दा रूप धारण कर गया। हुण तां ये पांच मनाए, पांच पांच रुस गए, पांच वाह वसे। हुण तां ये चाकरी लागे, कहंदे होया किवें? दूत लगे फिर चाकरी, सतगुरु का विसाओ, जद मैनूं सतगुरु मिल गए ते सतगुरु दा भरोसा हो गया। सतगुरु दा भरोसा, सतगुरु दे शब्द दा भरोसा, सतगुरु दी बाणी दा भरोसा, सतगुरु दी सिख्या दा भरोसा, सतगुरु दे सोच दा भरोसा। सतगुरु दी सोच सतगुरु दा शब्द है, सतगुरु दा सुभाव सतगुरु दा शब्द है।
सुगंधी शब्द दी, आखो वाहेगुरु, सुगंधी शब्द दी जीवन विच भी मिलती रही। अज कहिंदे गुरमुख ने उस सुगंधी नूं पा पा के ऐसा सुगंधी रूप हो गया, मैं मर गई हुण तां तू रह गया, तू तू रह गया, तू तू रह गया, सिर्फ तू रह गया। आखो भाई, तू तां कभी मरता नहीं, मरने वाली मर गई। आप फिर गुरमुख की बरसी कैसे मनाए? आखो भाई, गुरमुख की याद मना सकते हैं, मत मोलना के गुरमुख मर गया। आखो भाई, गुरमुख नहीं मरता। जो गुरु के शब्द के घर में समा जाए, नानक मुए ना आखिए, जे गुर कै शब्द समाए, जे गुर कै शब्द समाए, जे गुर कै शब्द समाए। जो गुरु दे शब्द नु कमा लेंदे हन, ओ फिर मरदे नहीं। आखो भाई, अज दे पितर शब्द विच भाई साहब बोले, गुरसिख साखी शब्द सिख सुनाया, गुरमुख शब्द विचार सच कमाए। आखो भाई, एक गल कह के मैं समाप्ति करांगा, 10 मिनट का मेरे को समय। आखो भाई, गुरमुख साखी शब्द सिख सुनाया, गुरमुख शब्द विचार सच कमाया, सच हृदय मुँह सच सच सुहाया। आखो भाई, आखो भाई, साखी शब्द गुरमुख गुरु दी सिख्या, गुरु दियां साखियां सुनाउंदा। आखो भाई, गुरमुख शब्द विचार नूं सुनदा है, सुनाउंदा है ते कमाउंदा है। गुरमुख ने यह जान लिया कि जीवन जूंदियां ही किवें मुक्त होना। आखो भाई, बेनती करा, संसार दे लोकी मुक्ति उस नूं मनदे हन जो मरण तो बाद मिले। पर सतगुरु ने ऐसा गुरमुख नूं समझाता कि जूंदिया ही जीवन मुक्त होना ही मुक्ति है। आखो भाई, आखो भाई, उस बारे किवें कहिंदे हन? तां श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का पितर शब्द जो जीवन मुक्त दे स्वरूप नूं प्रगट करता है, गुरमुख वो शब्द दृढ़ करता है। गुरमुख ने यह जान लिया, गुर के ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह। गुर कहा सो कार कमा, एक गुरमुख का सिद्धांत है, गुर कहा साकार कमा, गुर कहा साकार कमा। ते पितर शब्द क्या है? गुर के ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कछ ना जना, हर हर नाम हृदय सत, मन बेच है सतगुर के पास, तिस सेवक के कार्य रा, सेवा करत हुए नै कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। ते ए गल कही प्रभ की आ गया, आत्म हितावै, जीवन मुक्त सौ कहावै, तैसा हरक तैसा सोग, सदा आनंद तैनही वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त। किवें? श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी फरमा रहे हैं, आप पढ़िए।

ऐसा गुरुमुख का जीवन जो जीवन मुक्त हो जाता है प्रभु की आज्ञा को मानकर, ऐसा प्रभु का पुजारी जो जीवन में प्रभु के गुणों की सुगंधि लेकर दूसरों को भी ऐसी सुगंधि बांटता हुआ, ऐसा फूल जो किसी के गल का हार बनकर, किसी के मस्तक का श्रृंगार बनकर कुर्बान हो जाता है। फूल होना भी ऐसा चाहिए, सुगंधि बांटता रहे, तोड़ने वाले के भी गल का हार बन जाए, किसी के मस्तक का श्रृंगार बन जाए। गुरुमुख का जीवन ऐसा ही है, मजलूमों का सहारा बन जाता है, दुखियों का सहारा बन जाता है, उनको सुखों की सुगंधि बांटता हुआ अपने आप को तो कुर्बान कर लेता है, लेकिन शरीर के मरने के बाद भी अपनी सुगंधि जो बांटता रहा जीवन में, वो मरने के बाद भी बांटता रहता है। ऐसा परोपकारी जीवन गुरुमुख का है, जैसा भाई गुरदास ने बोला, गुरुमुख परोपकारी बिरला आया। इत्थे ही विचारां दी समाप्ति है। कीर्तन करते हैं, विचार करते हैं, बाणी पढ़ते हैं, कई प्रकार दिया भुलां हो सकदियां हन, बख्श लेनी है बख्श लेनी। दूसरी बार हिंदी विच व्याख्या करते हुए इस तरह एहसास हुंदा है कि कई बार परमेश्वर दी ऐसी कला वरती है, जदों पितर बाणी अपने विच समो लैंदी है फिर याद नहीं रहता क्या बोलना है क्या नहीं। जे उस समय हम उधर चले जाएं कन्वर्सेशन में, तो अंदर से टूटना पड़ता है, टूट कर बात नहीं बनती। टूटने वाला तो टूट जाएगा, दूसरे को भी तोड़ देगा। इसलिए मैं क्षमा की याचना करता हूं। बोलते बोलते नहीं मालूम रहता क्या बोलना है भाई, ऐसे लगता है बोलने वाला ही बोलता है, उसकी इच्छा है जैसा बोले। हम बैठ भी जाएं, नित की बानी याद करते हैं, लेकिन जे नहीं बोलना चाहता तो बानी स्टेज पे ही भूल जाते हैं। ये याद कराता है तो कई कई वर्षों की बानी चेते की चेते आ जाती है। ऐसे है, हर आपे बोले आप बुलावे, आखो वाहिगुरु। आपके दर्शन करता हूं तो ऐसे लगता है आपे संगत सद बहाल है, आखो वाहिगुरु। मैंने आपको नहीं बुलाया, बुलाने वाले ने बुलाया था, आखो वाहिगुरु। बैठाने वाले ने बिठा लिया, अब समाप्ति हो रही है, आपे विदा करावे, बधाईगी भी आप देगा, आखो वाहिगुरु। लेकिन इसकी विदायगी देने का एक बहुत ही बिस्माती रंग है, जब बुलाता है तो अपने आप को बिस्माती रंग में प्रकट करता है, जब आपको भेजता है तो आपके ऊपर बिस्माती रंग प्रकट कर देता है। देखना, बाहर जाने से पहले इस बिस्माती रंग को संभाल लेना, आंखों वाहेगुरु, ये बहुत काम आएगा। बाहर जाकर जो कुछ और रंग है वो काम नहीं आते, वो रंग तो बिंस जाते हैं, मैले हो जाते हैं, उस रंग के ऊपर दूसरा रंग चढ़ जाता है। लेकिन ये रंग जे आप ने संभाल लिया, ना खोया, फिर जब मिलेंगे आपको सुनने का अवसर परमेश्वर और दे देगा, और मेरे भाग जागेंगे
کیونکہ آپ ایسے سننے والے بن جائیں گے، ایسے سروتے بن جائیں گے کہ سروتے میں بہت شکتی ہے۔ جے سروتا اچھا مل جائے، وشمادی رنگ والا مل جائے، بکتے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے سب باہر نکال لیتا ہے، اندر نہیں رہنے دیتا۔ یہ سچائی ہے۔ جے سروتا وشمادی رنگ میں سنے، بکتا جو مرضی لکونا چاہے اندر نہیں لکو سکتا، وہ پرگٹ ہو جائے گا۔ سروتے نے اندر سے باہر نکال دینا ہے۔ میری تو یہ پرارتھنا ہے آپ کو ایسا ہی سروتا بنائے، جب پھر افسر ملے میں آپ کے درشن کروں تو مجھے لگے کہ آپ ایسے سروتے ہیں، اب تو صرف اندر سے جو پرمیشر نے اندر دیا ہے آپ اس کو باہر ہی نکالیں گے نہیں، بلکہ ایک میک ہو جائیں گے۔ آنکھوں بھائی آپ کے سننے والے تے سنانے والے میں انتر ختم ہو جائے گا۔ آنکھوں بھائی یہ میری پرارتھنا ہے۔ آؤ انند صاحب جی کا پاٹھ، رام کلی محلہ تیجا انند، ایک اوہنکار ستگر پرساد۔

मेरा कट कट के अंतर की जान तुपरा मेरा अंतर जामी जान कट कट के अंतर की जान तुपाले।

मेरा प्रभु, मेरा अकाल पुरख, मेरा वाहिगुरु निरंकार सब कुछ जानता है। जीव दे मन अंदर की है, मनुख की चाहता है, मनुख की इच्छा की ये परमात्मा जानता है। जिदे अगे आके असी सी सुनवाने ना, वो जानता है कि मेरे गुरसिख की मन की भावना की, वो चाहता की प्रभु मेरा अंतर जामी जान, मेरा प्रभु जानता है अंदर दी बुझ लेंदा है, देख लेंदा है कि आज गुरसिख कैसी मन अंदर भावना लेके आया है, आज की मांग है, आज इसनु की चाहिदा है, जो भी चाहिदा है वो सतगुरु देंदा है। क्यों?

बोलो भी ना, कुछ कहो भी ना, कि परमात्मा सुन लेंदा है, परमात्मा जान लेंदा है। अनुभूत ही जानो हाल, सब कुछ जानता है, वो वेख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आज कैसी मंग आई। परमात्मा ते ख्याल ही रखता है कि सेवक मंग करे ते मैं पूरी करा, कदों जीव मंगे ते मैं उसनु देवां। असी आने ही मंगण वास्ते इस डर ते डिगने ही ता वा कि सतगुरु अज आ वस्तु चाहिदी दे दे। सतगुरु एक खिन भी नहीं लांदा, सेवक चोली विच दात पा देंदे। किन्ना दी जिन्हां नूं यकीन है, भरोसा है, अकीदा है, असी भरोसा करी इहदे ते

जो साडे मन अंदर है तू जानना है। ते हे अकाल पुरख कृपा कर साडे मन दी इच्छावां भावनियां पूरियां कर दे। ऐसी अरदास असी सारे करिए कि पातशाह साडे मन अंदर इच्छा है कि तेरा नाम साडी चोली विच पवे। सब तो वड्डा नाम ही है ते जिन्हें नाम अपनी चोली विच पवा ले है रिद्ध सिद्ध नाम है की दस रिद्धियां सिद्धियां ते नाम दियां दासियां ने। असी नाम दी ही जाचना करिए जदों नाम मंग लांगे सब कुछ मिल जाएगा क्योंकि इधर आके सब कुछ असी मंगना है ते जो मंगांगे वो मिल जाएगा। जो मंगा है सो लेवे प्रभ अपने संतां दे वे ओ प्रभु अंतरजामी जानदा है अपने सेवकां नू सिखां नू संतां नू सब कुछ देंदा है जिहड़ा आके की देती भरोसे दे नाल इस दर तों मंग लैंदा है। आओ सारे मिलके मंगिए।

0: अमल कर, क्योंकि साहबा ने आखे अमल तो बिना रहा नहीं जाता, अमल कर।
1: अमल जे कीते दुनी विच दर्द आवे कम,
0: अमल कर। कैसा अमृत वेले उठ, नाम जप, सिमरन कर, गुरु दरबार विच आ, ए अमल कीता तेरे दरगाह विच काम आवेगा, सफला होवेगा, ए तेरा अमल तेरी सहायता करेगा। ते असी भी ऐसा अमल करना है जिस अमल लई सतगुरां ने सानू बाणी विच उपदेश दिता है। आखदे ने बाबा मन मत मारो, नाम रस पीवै, नाम रूपी रस प्राप्त कर, ओ अमल पी जिड़ा अमल हमेशा ही चढ़िया रवे। सतगुरु नू कैसा अमल सी, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम दा अमल करिया करदे सन जिड़ा उतरदा ही नहीं सी, लैंदा ही नहीं सी, हर वक्त चढ़िया रहिंदा सी, अठे पैर रहिंदा सी। असी भी ऐसा अमल करना है।

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरण कमलों के नमस्कार। हजूर बाबा जी अपने इस अमृतमय वचन दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, वो साडे प्रीवियस कीर्तना की जो लड़ी है उसके नाल संबंधित है। इस शब्द दे विच आख्या है कि क्या तुद कर्म कमाया है, कि तू की आके कीता है। इसका भाव कि कुछ करन दे वास्ते ये शरीर प्राप्त होया सी, इसका भाव देर वाज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इन लाइफ टू बी कंप्लीटेड, देर वार सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन, ए जर्नी टू बी कंप्लीटेड, ए ड्यूटी टू बी फुलफिल्ड। कहते हैं हूं तक तू दस उस संबंध दे विच तू कुछ कीता है, की कीता है। इस शरीरा मेरिया इस जग में आए के इस जगत दे विच आके क्या तुद कर्म कमाए, की कर्म तू कमाया है, की कीता है। और कल का जो कीर्तन सी उस शब्द दे विच महाराज जी ने आख्या सी अंधले क्या पाया जग आए, जगत दे विच आके तू की पाया है। विचार इक्को ही है। अज तीसरे जामे च गुरु नानक देव जी आख रहे हैं कि तू की काम किया है। भाई गुरु नानक साहब कल दे शब्द दे विच फरमा रहे सन कि अंधले क्या पाया जग आए, तेन शरीर मिलिया सी उस शरीर दे नाल तू की पाया, की अचीव किया है। देखते हैं कि यह शरीर तेन दिता सी इस दे नाल तू कुछ खास पाना सी, तू कोई कम करना सी, तू कुछ लाहा खटना सी, जिस दे वास्ते ये इंस्ट्रूमेंट दिता गया सी। पर कहते हैं ये इंस्ट्रूमेंट ही तू बिगाड़ लिया है, भूडी चाल इसकी चाल खराब हो गई है, सुनी तरह तुरदा ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी सारी दी सारी ओहो गलत

తను గురు నాన్న చెప్పారు కదా, రేణ నది చుట్టి మార్చే ఖట్ కంటే ఖట్ కంటుని మాటలో आज हजूर फिर चले गए। सुल्तानपुर के अंदर सारे शहर के अंदर के पहुंच गए कि नारद वे नदी शुद्ध वे भी नानकी भी कई ने जाती किया जैसे तेरा वीर वही नदी तो बाहर नहीं निकली और बेटी ने जल्दी कि मेरा वीर कदे नहीं डूबता, बहुत डूबिया उतारना पशु परेत मुगत को उतारे पाहन पार उतारे। हजू सचखंड बंद सचखंड वे नरम अगे रोज ही जानना ही चाहिए उस जोर के अंदर जाके हजूर लीन हो गए। जो जर में जर आए खतानंद क्या ज्योति सन जो कुछ समय के बाद उस जोड़े जो सोना आकाशता है कि सतगुरु सामने सन्मुख बैठे आवाज आई नान जी तो मात लोग कल की जीवन निर्धार करने वास्ते वापस क्यों आ गए। हजूर ने किया मेरी दादा जी पहले दसो सत्खंड के द्वारे से दरवाजे से अनेक ही राम अनेक ही कृष्ण अनेक ही मोहम्मद ईसा हमका गोरख खड़ोते कहना से सब कुछ आ गया जित दर लाख मोहम्मदान है ब्रह्मा कृष्ण पर महाराज तो फिर इन्होंने अपने नींद क्यों की आवाज आई सर मैं इन दुनिया भेजे जाके मेरा नाम जपाओ पर मेरा नाम जपान की बजाय अपना नाम दिया ने अपना नाम जपाया अपने पति अपनी जनानिया का नाम भी मैंने इस वास्ते मेरे दरवाजे तक पहुंच गए हैं मेरे बच नींद नहीं हो साहबान ने हथी वाहेगुरू फिर करो कृपा असि मातरों में जाके की दुनिया में तो उस अकाल पुरख ने हुक्म किया कि नानक जी ए नाम जान के दुनिया में छुपाओ खेड़ा ओंकार नाम महामंत्र

ऐसों के संदर्भ के पाठ्याय जी समाधि आवाज लगा की कर रहे हो तो हजूर कह लगे।

मनुष्य है, पहली थोड़ी बोल अमृत में जाग के स्नान करके चले आए हैं, एक दिन चले तुर जाए एकांत कह के अपने सारे से मूल मंत्र का जाप करे, बड़ा महा बड़ी शक्ति है ये नकारी मंत्र, जितना जप लो यदा बड़ा काम, तुरदिया फिरदिया उठदिया बहदिया हर नाम वो नाम वाहगुरु जी का ये जपांगे सतगुरु दिया मेहरा फिर सानू की मिलेगा साडा जीवन सफला फिर साडा एक लोक दुखी पर लोक नाम खाते मेले अखीरला दिन आशा जी की वार का मिलकर लगाइए उस उपरंत कीर्तन की समाप्ति और फिर हर

अमृत जल छाया पूर्ण चावल चढ़ाया सर्व मनोर पूरे जय जय कार सर्व जगंत लाभे सकल पूरे पूर्ण बुद्धि।

कीर्तन सिखाण दी तुसी सेवा ले ली है। ये सच्चे पाशाह शुक्र है इन्ने खुले पाठ वंडन दी तुसी सेवा ले ली है। सेवक बने प्यारे ओ कमाई संभालनी सीखनी है ते तुहानू बख्शियां कोलों सिखी जाएगी। असी नानक भगती करनी है रावण भगती नहीं करनी। बाबा नंद सिंह जी ने एक करी इनान करते पे एक सज्जन खड़ा सी कोल उदे मन च फुरना बनया मूह नहीं बोलिया कहिंदा बाबा जी का रंग थोड़ा काला है। बाबा जी का रंग काल सावला सी फुरना ही बने फुरना बाबा जी का रंग ना गोरा नहीं है काल सावला जा काला जा। ते बाबा जी गडवी उत्ते पांदे पांदे ना कहंदे की सोचदे मेरा रंग काला है। ते बाबा जी कहंदे पता क्यों काला है पाप कर करके काला हो गया। देखो सवा बारह का इशनान एक सवास बिरथा नहीं जाता पर मन कित्थे रखिया सेवक गुस्सा ना करियो सानू कोई कह दे ना तू काला है या काली है तो मेरा ख्याल दस श्लोक ना सुना लीए तसली नहीं होंगी। महापुरुष का जवाब देखो महापुरुष का जवाब पाप कर करके काला हो गया मैं की करा। वो धारना बनाते सी ना वाहिगुरु काली हो गई नाम तो बिना एक दास बेनती कर रहा है कि यह चीज तुहानू बख्शिया को मिलेगी बख्शिया अमृतसर विच बाबा ईश्वर सिंह जी नहर ते दीवान लांदे सी गुरु प्यारे ओ पंजाह पंजाह हजार का कट्ठ हुंदा सी ध्यान देना हुण पंजाह हजार बंदा सामने बह के सुनदा होवे वैसे नहीं पैर लगदे बंदे दे उदो बड़ी छाला वज जाती हजार के कट

जिन्हां ने मेरा प्रभु पाया है, मैं उदी मिन्त करां, उदा तरला करां, उदे चरण पकड़ां, भई मैनू भी दस केड़े रस्ते तुरां ते मेरा मालक मैनू मिल जावे।

नीर वहे वह चले जी। आज सतगुरां ने प्रीत नूं तोड़िया, जदों सहबे ने अखां खोलियां की तकिया जिस गुरु नूं याद करदा सी सतगुरु सामने खलोते, ते दूरों ही उची उची कहण लगा, सतगुरु मैं सुनिया सी तू गरीब नवाज है, तू निमाणिया नूं मान देना, जेड़े तेनू याद करदिया नूं उन्हां नूं दीदार देना, पर अज जाणिया तू सचमुच ही गरीब नवाज है, तू सचमुच ही निमाणिया नूं मान देना, जेड़े तेनू याद करदिया तू उन्हां नूं दीदार देना। सतगुरां दी दीदार कीते, अज बेड़ी विच सतगुरां ने चरण पाए, बेड़ी दूसरे कंडे लै गया, ते जदो सतगुरु दूसरे कंडे जा खलोते, भाई दया सिंह नाल दे सिख आ गए, ते अज सतगुरां ने इशारा कर दिता, दया सिंह इस गुरु नू, इस गुरु प्यारे नू कुछ कु मोहरां दे, गरीब सिख है, मजदूरी करदा, सारा दिन मेहनत करदा, अज साडे प्यार करके इसने मेहनत भी नहीं कीती, कुछ मोहरां दे। भाई दया सिंह ने जेब विचों मोहरां कढ़ियां, ते जदों सैदे नू मोहरां देण लगा, ते सैदा पुब्बां मार के रो पिया, ते कहण लगा, ओ पाछा ओ मैनू मोहरां नहीं चाहिए, मैनू धन नहीं चाहिदा, दुनिया दे लोक आउंदे हन, मैं उन्हां नूं वी दरिया पार कराउंना हां, मोहरां दे जांदे हन, धन दे जांदे हन, अज तुसीं आए हो, तुहानूं वी दरिया पार कराया, तुसीं मोहरां दे गए, ते दुनियादारां विच तुहाडे विच फर्क किहड़ा होया, मैनू धन नहीं चाहिदा, मैनू मोहरां नहीं चाहीदियां। ते साहब अज प्यार दे विच वस हो के कहण लगे, सहदे आ फिर की चाहिदा, मंग की मंगदा, अज जो तू मंगे तेरी झोली विच ओह दात पा देवां। ते सहदे ने गल विच पाया पल्ला, नेत्रा जो जल वेंदा, ते हाथ जोड़े पे कहिंदा, मोहरां देख के गलो ना ला मैनू, किते शकल ना मेरी विसार छड़ी, अज तुसी आए ते मैं पार कीता, कल नू मैं आवा मैनू कार छड़ी, बस होर कुछ नहीं तेरे कोलो मंगना, अज तुसी आयो मैं तुहानू दरिया तो पार कीता है, ते कल नू मैं संसार छड़ के आवा मैनू भव सागर तो पार कर दे, होर कुछ नहीं हो मंगना। ते गुरु कलगीधर पातशाह ने गलवकड़ी विच लिया, ते घुट के कीता प्यार, अज सतगुरु बख्शिश करदे करदे अज मुस्कुराउंदे होए अज सहदे नू वर दिता, ते साहिबां ने भी कहा, ओ सहदे आ तेरियां गल्लां बड़ियां प्यारियां ने, अज असी आए ते तू पार कीता, जा इक्की कुला तेरियां तारियां, जा सहदिया तेनू कल्ले नू नहीं, तेरियां इक्की कुला दा उधार कर देंदा। आओ भाई घर विच ए तू गुरमुख हो जावे, इक्की कुला दा भी उधार कर देंदा है, घर विच एहो जे प्यार करन वाला किते पैदा हो जावे, दर्शना दी तांग हर वक्त मन विच वैराग जी दे होवे, इक्की कुला दा उधार।